0: Support the sponsors of 94.7 The Pulse when you're shopping and let them know you heard about them while listening to this radio station. When you support our sponsors, you help support 94.7 The Pulse.
1: Geelong Art Centre. Geelong Art Centre vich har show ate har kahani ek nava darwaza khol diya. Sangeet, comedy ate dance di is adbhut duniya vich tuhanda swagat hai. Bas andar kadam rakho te kala de ranga vich rang jao. Geelong Art Centre jithe naviyan duniyawan khuldiyan han. Hor janan layi geelongartcentre.org.au te jao. Victoria Sarkar ate Creative Victoria de sanyog naal.
2: हमारे समाज में टीचर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे कई लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं और उनके जीवन में वास्तविक प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ विक्टोरिया में विभिन्न पृष्ठभूमियों से संबंधित टीचरों का होना महत्वपूर्ण है और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा में लाभ मिल सकता है। यदि आप या आपका कोई जानकार यहाँ विक्टोरिया में टीचर बनना चाहता है तो कई प्रकार के टीचिंग कोर्स उपलब्ध हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र हो सकते हैं ताकि आपको हाई स्कूल टीचर बनने में सहायता मिल सके। टीचिंग में करियर बनाएं। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए टीच द फ्यूचर सर्च करें। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
3: Geelong's up to date weather brought to you by the Heat Shop, Geelong's trusted Daikin specialist dealer. Station sponsor.
4: Salam dua namaskar vadakkam sastre kal jilang ke amjo sarude jilang a kya kumaru ja listening to me RJ Dhruv on 94.7 the pulse bahut se acche acche updates aaj lekar aaya hu bahar weather bahut thanda hai jitne bhi log bahar ja rahe hain make sure dhyan rakhiyega apna stay tuned with me for the next song coming from the studio

0: favourite shows on demand via the Pulse website.
1: Head to 947thepulse.com, find your show and listen back so you don't miss a thing. The Pulse on demand.
2: Hi, I'm Mark Seeks. The Pulse bridges generations. It's where elders share wisdom, young people spark ideas, and everyone finds common ground. Whether it's a nostalgic tune, a youth-led discussion, or a cultural celebration, The Pulse brings people together. It's radio that doesn't just entertain, it connects. In a fast-moving world, it reminds us that community still matters and that stories old and new deserve to be heard. That's why The Pulse is more than radio. It's a shared experience.
3: 94.7 The Pulse. एक यूथ जस्टिस वर्कर के रूप में आप हिरासत में लिए गए युवाओं की मदद करेंगे। यह एक सुरक्षित नौकरी है जिसमें वेतनीय प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर आप समर्थन देने वाली टीम के साथ एक फायदेमंद करियर की खोज में हैं, तो यूथ जस्टिस करियर सर्च करें। ऑथराइज्ड बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट, मेलबोर्न।
4: जिलोंग आर्ट सेंटर। जिलोंग आर्ट सेंटर विच हर शो अते हर कहानी एक नवा दरवाजा खोल दिया। संगीत, कॉमेडी अते डांस दी इस अद्भुत दुनिया विच तुहाडा स्वागत है। बस अंदर कदम रखो ते कला दे रंगा विच रंग जाओ। जिलोंग आर्ट सेंटर, जिथे नवियां दुनियावां खुलदियां हन। होर जानने लई jilongartcenter.org.au ते जाओ। विक्टोरिया सरकार अते क्रिएटिव विक्टोरिया दे संयोग नाल।
2: You're listening to 94.7 The Pulse. Want to share your thoughts? Join the conversation by texting us on 0488 877 947. That number again, 0488 877 947.
5: सलाम दुआ नमस्कार वड़कम सस्त्रेकाल जिलोंग केम छो सारो जे जिलोंग के कुमारो छे। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट जॉइन द कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन 0488 877 947। इस नंबर पर आप हमको मैसेज कीजिए। अगर आप अपना कोई मनपसंद सॉन्ग, कोई मनपसंद बात या अपना मनपसंद कोई टैलेंट जो आपके अंदर है, अगर आप चाहते हैं कि आप वो शोकेस करना चाहते हैं, All you have to do is ये नंबर पर हमको मैसेज कीजिए। कम एंड बी ए पार्ट ऑफ द स्टूडियो, हमारे साथ आइए, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे इन द स्टूडियो। जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, सारे लिसनर्स, मेक श्योर आप हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा 94.7 द पल्स। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे हमें, उतने ही अच्छे अच्छे शोज, उतनी ही अच्छी अच्छी बातें, उतने ही अच्छे अच्छे मोमेंट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन लेट्स हैव द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द स्टूडियो।

0: The power of community. 94.7 The Pulse.
1: जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड, एक बहुत ही अच्छे न्यूज़ जो मेलबर्न में अभी चल रहे हैं, मेलबर्न मीट्स मोदी। जितने भी इंडियंस मेरे साथ कनेक्टेड है, अभी सबको बता दो, जी हाँ, द न्यूज़ इज़ करेक्ट, द लीडर द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, मेलबर्न में अभी हर जगह ही जगह बात चल रही है। जितने भी जिलों के लिसनर्स मेरे साथ कनेक्टेड है, मेक श्योर शो में आइएगा ज़रूर। कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ऑल यू हैव टू डू इज सर्च इट ऑन गूगल। बहुत ही अच्छा शो का साहेब इज कमिंग टू मेलबर्न, एक बहुत ही अच्छी मोमेंट फॉर द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा अगर आप अपना कोई शो, अपना कोई कंटेंट, अपना कोई भी म्यूजिक या कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि लोग सुने, लोग आपका कंटेंट देखे, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डायल 0488887974। स्टे ट्यून्ड विद मी।